0: World Link को festivity offer. अब पाउन होस्ट एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट और नेट टीवी साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रु 1200 प्रति महीना में. शर्तहरू लागू हुने छन्. छिटो बनेकै World Link.
1: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.

0: प्रयोगशाला,
1: डायग्नोस्टिक र थेराप्युटिक तथा अर्थोस्कोपी सेवा,
0: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा।
1: विस्तृत जानकारी का लागि कलेज अफ मेडिकल साइंसेज नेपाल भरतपुर चितवन, संपर्क नंबर 056-525-012, 056-525-013।
2: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.